बिके हर सामान बिके जान बिको यहाँ पे गल लगा दे सही दाम बिके जान बिको यहाँ पे गल लगा दे सही दाम देख गजबर का खत्म मेरी पहचान पहचान मुझे तेरे जंगल का शेर खान जहर काम करूँ ना लू किसी का भी एहसान बाप बने मेरा तेरी माँ यहाँ पे तुझे पता

0: गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान पहचान मुझे तेरे जंगल का मैं शेर खान जहर काम करूं ना लू किसी का भी एहसान बाप बने मेरा तेरी माया पे मेहरबान
1: तुझे पता क्या है मेरी पहचान नैनताल का निपटे सैनिता ने पाम ने मार जब भी करूं बोलूं मैं वे

0: करते जमाना पकड़े बार समना भरते जमाना थोले कितना वेवी आई से बिचेस फक यू पे मी आई एम जॉन डिक विद अ वेपन बट किलम पैराबेलम सारे दिन अब देखे पैनिक इन अ मैनिक इन अ क्रेजी
1: गजबर का खत्म मेरी पहचान पहचान मुझे तेरे जंगल का शेर खान जहर काम करूं ना लो किसी का भी एहसान बाप बने मेरा तेरी मां यहां पे